ठीक है, दिस इज व्हीकल यूनिफॉर्म नंबर 39 कुशीरा कॉम्फर्ट, यूनिफॉर्म नंबर 39 कुशीरा कॉम्फर्ट, कॉलिंग एस्टेंड लाइन।